0: I'm just feeling my vibe right now, I'm feeling myself.
1: Oh, किसी लड़की का उड़ता कोई